शिवतांडव। रावण ने शिवतांडव स्तोत्र से भगवान शंकर को इतना प्रसन्न कर लिया कि आशुतोष भगवान शिव ने उसे केवल सकल समृद्धि सिद्धि से युक्त सोने की लंका ही वरदान के रूप में नहीं दी, अपितु संपूर्ण ज्ञान विज्ञान एवं अमर होने का वरदान भी दिया। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र के सुनने मात्र से व्यक्ति समस्त बाधाओं से छूटकर समृद्धि संपत्ति और संतति प्राप्त करता है।

0: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ ग्लोबल अनलाइन रेडियो, अ रियल साउन्ड अफ लाइफ।
1: हर एक दिल यहाँ एक दिल तलाश करता है, वफा की, प्यार की मंजिल तलाश करता है। यहाँ परवाने शमा से करीब होते हैं,

0: You are listening Global Online Radio, a real sound of life.
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर